सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा पशु अधिकार संरक्षण कानूनको खाँचो ऐन जारी गर्न दिलाई।

0: सरकार बनेगी की गांव बनेगी के बनेगी सहयोग से कैसे तुम
1: ये तो दर्द तो
0: कैसे स्कूल बनेंगे जैसे पक्की बनेंगे तीन साल बनेंगे तो पास तीन साल बनेंगे
1: कचे पर पढ़ते अपने पहले मेरे बच्चे रहे तो मेरे बोले करते ये तो पढ़ाने तो ये जैसे स्कूल बने
0: तो मेरे पास सात वर्ष तक पढ़े पहली
1: दिन पाँच सात वर्ष
0: और कैसे हम क्या करें पढ़ ली तो
1: अब
0: स्कूल आए थे ना
1: स्कूल तो रहे मैंने
0: जस्ते पहले सोना परिवार थाली गाड़ी में तो जस्ते गाई भैंसी छी उतरी सुगर उगर तो बड़े धीरे धीरे पहले

0: चीजों को सीखना है। तो अब ऑपरेशन एक ही पार्टी की अलग अलग आती
1: है,
0: उसके पास आया की और नहीं तो अपन अवैध पाचन का तो

0: सारे सस्ते कारण उन्होंने किसी ने नहीं
1: तब मिलने तो मेरा मालूम जो है उसका नाम लेना है जब तक मसले में तब लेना है तो लेना है
0: मसले मेरा मसले पर ही जाएगी
1: नाम तो मेरा उठाना ले जाए
0: राइट मेरा राइट ले जाए जब हम सीजन के हम वाली

0: खेती होती करे भाजी मन खा गई बारी अपने करे बड़ा जस्ट रेशन खा ले तो आप धारणा ही बताए नहीं कि पहले कैसे तुम खेती कर रहे कैसे धारणा लगाए तो मतलब लाइफ में कम उत्पादन हुए
1: मैंने
0: गाय भैंसी दिया देर बाद

बजट 18 देखिए भले 3 दिसंबर मानसून जन्य विपद का कारण दुर्घटना होता 85,000 लोगों की मृत्यु 13,000 है 13-20,000 दुर्घटना फिर कैसन पानी में डूबे और 58 बाढ़ का 4 चट्टान 7 परिवार

आप के पास को जानकारी दिया गया केन्द्रीय पार्षद प्रमुखहरू तथा केन्द्रीय स्तरीय भ्रमण शासनको अध्यक्ष रोहित कुमार चौधरीले हरेली पुरा तथा थारू संस्कृतिको संरक्षणमा समुदायसँगै राज्यको पनि दायित्व

0: Radyo kanalı podcast olacak. Tamam sorun var. Niye diyeceğim?
1: Hazır. Tamam. Perfect. Kisi kedi kanal. Kusura madde anzahati. Ab gordiya ko bas odi mara hal. Osu kotinan sopraya suna. Indian, Italian, Tharan Patnari Kual. Sahito, Indian mini killer. Combine wheel, rice wheel, chara machine. Harvester, soft water lagay. Osu pamsi kwa dana pina upgrade machine. Oina kastan server. Kheti kisani karna sab meri saman uplabdh ba. Osu hesab bigar sab meri kisi ko machine pe pise chutma bana jai. खबर करने से घरवा मकान से प्रेम बना लिया हजूर कान में एक किस संबंधी कौन सामान खींचा सकती है यदि चाय की कर से संसदीय पांच घटे मार्ग पशुपति नाम सप्लाई सा
0: संपर्क नंबर 18 5 80 25 14 और 18 2 24 0 26 80
1: नवजीवन सहकारी संस्था का पक्ष ग्राम पसंद में थाउसेंड रुपए का उत्तर पांच रुपए

0: ना केरा दुरी साग सब्जी फलफूल सहित स्वस्थ पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी गरी
1: रेडियो गुरुबाबा एफएमद्वारा सुरक्षितको जारी सन्देश
2: अगर बोलो

0: चाहे पुजारी समेस
1: संदेश
0: कहाँ जाऊँ कहाँ करूँ फिर तो कब महीना हो गया।

0: आपस में हमारा अपन भाषा अपन सब पहचान नाच गान खान पान सबको हमारी रहती पैदा हमारा पहले खान पान में हम आधारित चीज खाई सब मदर रही स्वस्थ रही घर घर पहले हमारा पुस्ताओं के एकदम पहले घर घर रहना सब कुछ ये सुनता हूँ हम सब काम धाम करना हो भी रोक नहीं करना है हम बहुत पहले रहना मदर रही आज हम ये खान पान में थे बहुत मजा आ रही थी बैठा सब कुछ ये सुनता हूँ विशाली पर लगता काली धान में थे विशाली ये डाल रसा के स्वामी जगह स्नान का जगह थे वो सब वास खाली सब सब रोग के रोग लगने आ रही थी कि जिना यहाँ पर बहुत खाता था और संस्कृति जो हमारा हमारा नाच गान थे हमारा पहला पुरखाओं ऐसी जरूरत नस्ती वाला गई लगी सब
1: Thank you.

0: kita setelah mudah bersama satu misalnya ikut bersama akan berita macam sebenarnya mereka sudah secara mungkin melakukan perasaan sih mereka ini lah mudah terlalu kalau sebab mana ikut bersama ini suku enggak mana mana begini profil sebenarnya nak dapat dari dalam semua usaha mana apa nak dapat dan saja terus mesti kita masih berdaya kalau mana mana akan saya sambung sampai kalau siapa kalau sahaja sahaja kita berdaya lagi apa dia dia mungkin एकी नामा वास काम करके जीते की बजाय काम करके रमाइलो करो कुछ नहीं अपन काम समाज के अंदर अपन अधिकार का उन्होंने आस्था से कर उन्हें जीते कर ये करो तो लगी तालिम दिए पड़ना समझता है हमारा हमारे जो मने हमारा नस्ती जीवी करने से सीखती रही समाज के लड़का आप हम करते आप सीखा का सिखाई करन सीखा पर साथ में के आवाज़ ना तो जैसा आजकल तस्वीर ना देख नंबर यहाँ ना तो नहीं मिलता नंबर यहाँ ना तो नहीं मिलता तो हम कर नज़े पर सीखाई करन डॉक्टर हम सीखती रही हमारे परिजन मैं वैसे तो सीखा नहीं ना तो नहीं हमारा मुकन नहीं ना जीवी नहीं सीखी भी करो से उठा तो ना हमारे लिए किसाई कुछ दर्पणी करेंगे लोग लगते आप मुंडा बजाय नहीं जानता आप मुंडा बजाय सीखाई करो उस तरह तो सीखती रही वैसे मुझे तो सीखा रहा है मुंडा तो ठीक करना रहा हूँ अस्तंस्तं का हम लोग लगते हैं दायिवान काम करने के लिए सबको जब बुद्धि जीवित करने के लिए
1: तो जीता
0: है क्या करना है मुझे लगता है कुछ करना है शायद जीता है बुलाते हैं इन्हें कहीं ना कहीं कि प्रोग्राम जीते हैं बनाकर इन्हें करना होगा करना होगा करना होगा जीत हासिल वैसे तो चेंज नहीं चल रहा है अपन अपन घर में अपन घर पर संधा वैसे तो करो करने से उतनी बनी है तो बस आगे कहाँ तक बताइए तो आगे नीति अधिनियम पर ये ज़रा क्या अपन देगा

0: ಸಂತಸನು ಪಾವತಿಯಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಈ ಭಾಯಿ ಈ ಪಾವತಿಯ ಪಡೆಯ ಕಾಣಿಸಿತು ಅರ್ಥಕಾಲ ಕಾತಮಿಯ ಪ್ರತಿನ
1: ಸಂಕಂತ
2: हजुर एकीसी खेती का सलाह देना चाहती बढ़ने का पास और हिमाचल पशुपतिनाथ सप्लाइज में इंडियन इटालियन धान कटलरी पर चाइजो इंडियन मिनी टेलर कंबाइन मिल रेस मिल चारा मशीन हार्वेस्टर साथ वाटर लगन पशु पंक्षी का दाना बनाना प्लेट मशीन और यहाँ का संसेवा खेती किसानी करना पूरे एक समान उपलब्ध था उसने कहा बिगड़ सकते कृषि का मशीन से विशेष छूट में बना जाए खबर कर से घर मजा करते बना बैठा हजार का मतलब किस संबंधित कौन समान की नस्ल थी यदि चार की तरह से समझते पांच परिवार पशुपतिनाथ सप्लाय
1: संपर्क नंबर 98585014

0: इंजेक्शन सापड़ व्यवसाय हानिकारक नहीं रहा वो फिर यदि सपन व्यवसाय से पूर्ण लोकल उपचार केंद्र में जा रहे
1: विश्वास रखना और सही जानकारी पाया और लघु उपचार केंद्र का नकारा कई सफलता रहेगा आधिकारिक रूप ऐसी नेपाल डॉट ओ आर जी में जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय।

0: expansion to the channel के पन करने शुरू का स्वास्थ्य बीमा कार्ड और आश्वासन दरार पूंजी पर के पद का मुख्य प्रतिनिधि लगाकर चलना खाना था रो पूरा समाचार इंदु से
1: बांसकेरा में जो रक्तदान महाशिविर में तिरहत्तर तीर्थगढ़ सकल दुर्गा राज्य निधि डॉक्टर प्रकाश मणिजू का उन्नाइसौ पुण्यतिथि के अवसर में रक्तदान जीवनदान कला मूल नारायण का संघ आयोजित महाशिविर में तिरहत्तर तीर्थगढ़ संकलन भैर रगत अभाव के कारण के प्रभेद अकाल ज्ञान निर्धारित होने उद्देश्य के संकलित रगत उपचार का क्रम में आवश्यक पर्ना विनियमन उपलब्ध कर आयोजक जनिंदी प्रभा कुमारी पुष्पा दीदी का सभापतित्व में हुई कार्यक्रम में बांसकेरी नगर पालिका के नगर प्रमुख खड़ग बहादुर पाटा प्रमुख इंदिरा चौधरी वार्ड नंबर पांच का सोसायटी का प्रतिनिधि उद्योग व्यवसाय लगायत का सहभागिता रक्तदान कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान ध्यान तथा दीप प्रज्वलन 573 जना रक्तदाता के रक्तदान कर रहा बर्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रशिक्षण केन्द्र विकास शाखा निवासी मध्यम समाज सेवा प्रभाग प्रभात तथा बर्मा कुमारी क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंज भारतीय कार्यजना महल कार्यक्रम बांसकेरी नगर पालिका का समर्थन नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज बांसकेरी नगर समिति नेपाल रेड क्रस सोसायटी बसाखा बांसकेरी बांसकेरी उद्योग वाणिज्य संघ युवा संसार बांसकेरी रेडियो गुरुबाबा एफएम इलाका प्रहरी कार्यालय मतिपुर और सशस्त्र प्रहरी बल बेस कैम्प पटनिया का संयुक्त सहकार्य रक्तदान कार्यक्रम में बांसकेरी का राजनीतिक दल का प्रतिनिधि समाजसेवी उद्योगी व्यवसायी कर्मचारी युवा विद्यार्थियों का रक्तदान कर रहा आयोजक रक्तदाता और अतिथि पर कला पानी फल फूल का व्यवस्था का संग मयक चिन्ह प्रमाण पत्र सभी दे रहा यह अवसर में ओम भेली डेंटल क्लिनिक का प्रार्थिक सहित में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर समय संचालन द्वारा शिविर में सहभागी डेंटल दांत परीक्षण और आवश्यक परामर्श सेवा दे रहा मध्य कारागार में लगभग 80 जना कैदी का स्वास्थ्य बीमा कैदी का कारागार में लगभग कैदी को स्वास्थ्य सेवा में सहज पहुंच सुनिश्चित करना उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा कैदी को कारागार प्रशासक दीपेन्द्र बहादुर शाही जीवारोगी अशक्त अपंगता उलक मणि ज्येष्ठ नागरिक महिला तथा 50 वर्ष से ऊपर कैदी को प्राथमिकता में लगाई का स्वास्थ्य बीमा कैदी को मतलब बात 125 जना क्षमता का गोरगया कारागार का पुरुष मंदिर ग्राम हाल 100-291 जना कैदी और 900 जना मंदिर बाट 125 जना क्षमता का महिला मंदिर ग्राम 36 जना कैदी 10 जना बंदी तथा 3 जना आश्रित बालिका बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विशेष कई खातिर का रोगी तथा जोखिम कैदी का उपचार सेवा देह सहल छैन कार्यक्रम प्रशासन प्रशासक शाही जानकारी बाट
0: बिन्दु चौधरी बर्दिया में एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में 31 वन्यजंतु का ज्यान गए तब से बैठक 5 वर्ष का तथ्यांश्यार बेर सड़क दुर्घटना में पड़कर 170 वन्यजंतु का ज्यान पीड़क देख पड़ा बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्र भीतर सवारी साधन तीव्र गति व चालक का लापरवाही का कारण वन्य जंतु दुर्घटना में पड़ना पड़ेगा निकुंज भीतर सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण द्वारा टाइम कार्ड प्रणाली लागू कर सवारी साधन का अधिकतम गति प्रति घंटा 40 किलोमीटर कायम कर नेपाली सेना का जबर संघ गणरम्भापुर रेंज पोस्ट से सैनमाल रेंज पोस्ट तथा अमरेली रेंज पोस्ट से चिसापाली रेंज पोस्ट समय सैना सवारी साधन होकर टाइम का डेट लाल बाद निकुंज तथा अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 में 31 81-82 में 27 81 में 37 79 80 में 30 व 2078-79 में 45 वन्य जंतु का सड़क दुर्घटना में ज्यान गए आर्थिक वर्ष में केरा क्रमशः 14-16-29 21 चित्तर का ज्यान गए सुवर कंसुअर रतुआ तुलसी वन बिलार चरायु बांदर comissions per ser el professional o per data a tipus de 3 arbres, gràcies a situar l'home a Montsoló, bon vilar sofit, ictis, comissions per a que han dinat ni contes en elevat, perquè ara es tenen contes són tot xerrat de crítica, vam suggerar a dictar i morir el meu pare, com s'ha comissions tu ser el professional amb 16 anys, 3 sigma, time card, alibari, pregiba, Rider Kormose, Charte, Speed Checks, after Hanna Palisirabu, Nikunzaba Kormasarika, Summit Propos Tiba Habiba, Savarizava Kukan, Sajid Kalai, Sajid Ramulaka, Karikram Pes, and Talan Kajila, Kupani Botanaja. Asunitzar, Asunitzar, Bishes Mohammed of Prashna, was a power of Poxitas about Nikarina Kati, Asura Pasuri Nagarpanika.
1: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधानसभा दलाल पुँजीपति वर्गका मुख्य प्रतिनिधि रनक आरोप लगेरबाट पार्टीको कोशी प्रदेश समितिदेखि आज आयोजना गर्न पार्टी एकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा दलाल पुँजीपति वर्गको मुख्य प्रतिनिधि जो नेपालको सत्ता कब्जा गर्न आरोप लगेरबाट 2062-63 परिवर्तनबाट नेपाली कांग्रेस दलाल पुँजीपति वर्गका मुख्य प्रतिनिधिका रूपमा रनकमा आमा राष्ट्रको अवसर शक्तिका रूपमा आज भर्न उहाँको दावीमा उहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य वर्ग शत्रु जो आमा राष्ट्रका रूपमा गएर उहाँ वर्तमान सत्ता जनविरोधी डगरमा आघात भारतीय राखी आरोप लगेकोबाट सत्ता सिद्धान्त नीति कार्यक्रम बजेट आम जनता तथा तल वर्गको हित निरनक उहाँ कारणबाट सरकारको आर्थिक नीति उपका वर्गको हितमा केन्द्रीय रूपमा दावी गर्नुबाट
0: राष्ट्रिय समाचार सँग हाम्रा सन्देशमा समय ओराइलाग्दा हाम्रा सन्देश ओराइनासे पहिला मुख्य मुख्य सन्देश फेरि बाँसकोलीमा होइन प्रतदान महाशिविरमा 73.75 सन्तुलन फिर्ता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सोमनाथ खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपा दलाल पुँजीपति वर्गका मुख्य प्रतिनिधिहरूलाई सन्देश प्राप्त

0: विकास के मिला था
1: विकास के लिए वो तो सभी का दिया था ना
0: ये पानी पानी में विकास का पता नहीं चल रहा है ये खाए खाए गए था जो खास है कि रात के समय में कभी से गए थे कि कभी से निकल के चला गया तब कब लग पाँच बजे ही भाग के निकल गया था शायद शायद शायद जल्दी से जाने से लग पाओ इसे उन्होंने खाए वो उन्होंने सहा नहीं कर
2: विश्वास लगता वो सही जानकारी पाएगा वो लगन उपचार केंद्र कहाँ पर है सब पता लगेगा आधिकारिक रूप से इसलिए नेपाल.org में जाकर आवश्यक जानकारी लेनी चाहिए नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल.www नेपाल का साथी

अभी तो वो फोन कर लग पैसा नहीं ला रहे। 10 मिनट तक अपने हमारे से अपन लागू समस्या के बारे में छलफल कर सकती। वो एक चोट में कैठो समस्या पूछना का कहना पूछ क्वेश्चन नहीं हो, अपने एक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कृषि मौसम सलाह बुलेटिन रिकॉर्ड हर एक शुक्रवार तो वो पेपर लाभ हो कि किसानों को पता नहीं रह के पल बदली जाएगी, पानी पड़ेगी, बाढ़ आएगी, क्या हुई मौसम से संबंधित कुछ चीज में पता नहीं हुई तो वो कर लाभ हो ये सलाह आगे वो पता पाई तो आप बारे में तो सब चीज आगे पाई हमारे ये सलाह हो कि हफ्ता का मौसम मौसम अध्ययन अध्ययन करके काल पढ़ू या दूसरे हफ्ता के मौसम के अनुमान करके वो मौसम से दाली नाली में पशु में कैसे समस्या आई वो समस्या के बारे में फिर वहाँ दिया घाट वो समस्या समाधान पे दिया घाट हमारे वो एकदमें काम लगना चीज का वो काम लगना चीज का ना हमारे कृषि में पता थी कि हिसाब से 53 जो नगर पालिका गाँव पालिका पार्टी वो नगर पालिका गाँव पालिका में हमें पता देते यहाँ से वो वहाँ के कृषि शाखा वो का जनाव देते हैं किसान टीम वो बहुत काम लगना चीज का हर एक हफ्ता निकल वो किसान विभाग कौन कीड़ा आईना वाला बा वो कीड़ा लागी तो

0: जितनी यहाँ ऐसा बना कि जो रास्ता यहाँ सीखी तुमने रास्ता रही हो बढ़िया फिर हो बहुत बढ़िया चीज हो तो फिर बहुत बता
1: रही हूँ रेडियो।

0: सक्रियति नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिलो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ। सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो गुरुबाला एफएमद्वारा जनहितकारी सन्देश।

दिया स्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता यहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य सेवा आवश्यक परेमा

कितने दिन बोले थी तथा रोग नियंत्रण महासंघ का राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथी नीति कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसंधान केन्द्र सम्बको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा क्याम्पसका लागि प्रस्तुत सन्देश